0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

का घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राण

और रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चलिए अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन होगा पंडित जय शंकर जी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन पेश की गई पंडित जय शंकर जी की आवाज में अभी आपने सुना। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा विपिन की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन प्रणव की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। एक भजन जो हमारे बहुत से सुनने वालों भी पसंद करते हैं। आज

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

सेवा में हूँ। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर सा भजन की ओर हम आपको ले

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। आप जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

भारतीय आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। सुनने वालों, यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा आज शनिवार की सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया।

0: है। हमारी सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Radio SBS wens je een heel fijn weekend. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

7 मिनट वेटेड हो चुका है। सुन वालो, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, 2 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को एक खूबसूरत और सुहाना वीकेंड बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा सुन वालों बस सुनते हैं और रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से भी आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है। चले पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। इसी तारीख नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में खूबसूरत गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0322656560। किशोर एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

0: कर रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी गीता दत्त की आवाज में। गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना बस प्रोग्राम में सुनते

गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में तलत जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

महमूद के आवास में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत के बाद हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर है। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और पुरानी फिल्म अनारी का गीत आप सुनते ही रहना।

अनारी का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

हार्ट ऑफ रेबेलियंस माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

डायरेक्टर फिल्म कर्ज गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कौन सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना होगा ऐड फिल्म नील कमल मोहम्मद रफी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना बस पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में।

नाटक को देखने वाले हैं। आज सुबह भी कुछ वालों तार किया है अपना टिकट रिसर्वेयर करने के लिए। जिस तरह से आप सभी सुन वालों को खबर किया गया है कि डीओ टिकट और ग्रुप्स टिकट आपको दिया जा रहा है। डीओ टिकट टू टिकट्स फॉर फेयर तक हेरो एंड ग्रुप्स टिकट फेयर टिकट्स फॉर 70 यूरो। रेडियो SBS के पास सिर्फ ये सब टिकट जो है आप रिसर्वेयर कर सकते हैं और आज शाम में जाकर बोर्ड पर टिकट आप ले सकते हैं। और हर एक इंफॉर्मेशन भी नाटक के बारे में आप रेडियो SBS के पास ले सकते हैं। आज का मौसम जो है बदली बदली सा मौसम है। कहीं कहीं धूप दिखाई देता है और कहीं कहीं रिमझिम बारिश हो रहा है। रात्रि के वक्त में काफी जोर तोर से बारिश होने वाले है। तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आगे तक पेश किया जा रहा है। अब की बार गाना जो आप सुनेंगे लता जी की आवाज में और गाना को मांग करने वाली है देनहाग शहर की रहने वाली कमला। कमला ये खास गाना आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं।

रेडियो SBS की जरिए लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। डनहाग शहर की ये रहने वाली कमला कमला ये खास गाना आज की ये प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए बस पेश की गई है। असरो बीठे गाना सुनकर और काफी पसंद किया है।

शहर यूथ से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी आपको दिया जा रहा है फरमाइश के बारे में। हमारा प्रोग्राम दया बे प्लस द्वारा भी सुनाई देता है, उसके बारे में भी सभी इन्फॉर्मेशन रेडियो SBS का वेबसाइट पर आपको दिया जा रहा है। और रोजाना आपका ज्योतिष शास्त्र दख हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर होता है। मौसमी समाचार और तरह तरह की खबरें उसी वेबसाइट पर आपको दिया जा रहा है। खासतौर पर फरमाइशे के बारे में भी फरमाइश जो 5 यूरो पर फरमाइश पेश किया जा रहा है। और अगर फरमाइश की बातचीत हुआ तो कल दिन में 12 बजे से फरमाइशे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी और रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। और कल जब भी रविवार है तो 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, ग्लेन रामबाली के जरिए जो पेश किया जाएगी। कुछ हफ्ते बैठक गाना प्रोग्राम नहीं पेश हुआ है इसलिए कि बैठक गाना मास्टर ग्लेन रामबाली छुट्टी पर था, तो इसलिए कल से फिर आप सभी सुनने वालों की सेवा में वही हंगामा भरी प्रोग्राम पेश किया जाएगी, बैठक गाना प्रोग्राम। तो चले एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। हमारा रेडियो SBS पर या कही है रेडियो SBS का ऐप पर इस गाना पर काफी रिएक्शन आए, बहुत से लोग जाकर स्टेटस पर देखा ये गाना, काफी लोग अपना अपना रिएक्शन दिया। दो कल्याण फिल्म का नाम

विश्वजीत और खास तौर पर माला सिन्हा का फिल्म का नाम दू कल्याण, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बसपीस की गई। यूट्रेख्ट लाइट्स रैंक गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। और राजन गिरधारी खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है, द माइटी मुकेश की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म दीवाना, माइटी मुकेश, यूट्रेख्ट लाइट्स रैंक गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगी हुई गाना प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों के लिए।

उत्रेख लेचरें गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का खास मांगी हुई गाना आप सभी सुनने वालों के लिए बस पीस की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। शुभ वीकेंड पीस किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शहर उत्रेख से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुन वालों, हमारा ऐप पर यही लिखा है कि आज नाटक देखने जाएंगे। मुझसे सवाल किया है कि आप भी जाएंगे? हाँ, हम भी जाएंगे, बस मुलाकात होगा उत्रेख डेंसकोप में और मिलकर नाटक को देखेंगे। अभी अभी मैंने आपको खबर दिया कि डीओ टिकट और ग्रुप्स टिकट आपको दिया जा रहा है। डीओ टिकट 2 टिकट्स फॉर फिर तखेड़ो और ग्रुप्स टिकट 4 टिकट फॉर 70 यूरो। और ये सब टिकट के लिए आपको रेसर फेयर करना है रेडियो SBS के पास तार द्वारा 0-3-2-5-6-5-6-6 पर या तो रेडियो SBS का ऐप के जरिए। चलिए प्रोग्राम में गाना जो अब की बार पेश होगा लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में, रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का नाम, 1961 का फिल्म, 1961 का फिल्म, तलत महमूद और लता प्रोग्राम में, तू रूप की रानी।

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Rijnbaard Mons van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier een kwartier langer over. Dan de A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2. De N208 Haarlem richting Sassenheim. Tussen Hillegom en de Keukenhof staat file. Een kwartier vertraging. En tot slot de N261 Tilburg richting Waalwijk. De Efteling is in trek, want voor de Efteling staat een file van een kwartier.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: 3 minuten over 10:30 studiotijd. Hoe je gaat hem? सर है 10:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और इसी तार की नंबर पर हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं आप। उसी सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तमाम पुरानी नगमे पर और खास तौर पर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में इस रेडियो स्टेशन के जरिए इस महंगाई की जमाना में हर एक काम काज किया जा रहा है। आपकी फरमाइश फैफेरो पैर फरमाइश हर एक के लिए ये दाम रखा गया है। हाँ कभी कभी सुनने वालों ये सवाल करते हैं मुटिक लिटवर्द ओम फरबाइस तकेफ फॉर 5 यूरो पर फरबाइस लिट होने की कोई जरूरत नहीं हर एक के लिए ये दाम रखा गया है 5 यूरो पर फरबाइस। और आपकी तमाम खबरें तमाम रिक्लाम हुआ जो भी रिक्लाम आप देना चाहेंगे सस्ती दामों में आपकी तमाम खबरें तमाम रिक्लाम बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए महंगाई की जमाना में सस्ती दामों में आपको फरमाई से तमाम खबरें देना है तो सिर्फ रेडियो SBS के जरिए हो सकता है। अल मेर दाम फेर तक यार 40 साल से सारे रेडियो SBS का प्रोग्राम Utrecht शहर से फनाउट द मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड उसी शहर से Utrecht शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तो चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार फिल्म ताज का गीत पेश किया जा रहा है हेमंत कुमार की आवाज में।

0: पड़ेगा। बाजे सदाई तेरी झाजरिया मनाए तेरा सांवरिया मान भी जा। गोरी बुलाए तेरा सांवरिया मनाए।
1: 1955 का फिल्म, फिल्म का नाम ताज। गोरी बुलाए तेरा सांवरिया, स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। हम देख रहे हैं हजारों हजारों सुन वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी को वेलकम, सभी को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर एंड लता प्रोग्राम में किशोर कुमार एंड लता प्रोग्राम में

सर जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। हो गया है जो प्यार तो दिलदार मिल गया, किशोर एंड लता ने फरमाई प्रोग्राम में। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl Live vanuit het hart van Nederland, vanuit midden Nederland, Radio SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। उसी सुनने वालों प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं आमसफोर्ट शहर में मन्ना सुखाई भी हमारा प्रोग्राम घर पर बड़ी आराम के साथ कॉफी चाय के साथ बस सुनते हैं। अभी स्टूडियो की ओर तार किया, कुछ हंसी मजाक भी हुए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आमसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाई एक गाना मांग किया है आइडो फिल्म नजराना मोहम्मद रफी की आवाज में।

एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश की गई। फिल्म का नाम नजराना, 1961 का फिल्म। आमुसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाए ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते

इस प्रोग्राम में पेश होगा लता जी की आवाज में फिल्म का नाम मैं टू सी तेरे आंगन की, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में सुनते ही रहना। और देखा जाए लोखम शहर से, लोखम शहर से अखनेस के तरफ से अपने प्यारा प्यारा पति आनंद के लिए दिल जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम मैं टू सी तेरे आंगन की है, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना। लोखम शहर से अखनेस की तरफ से अपने प्यारा प्यारा पति आनंद के लिए प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई। और खास तौर पर लोखम शहर से अखनेस की तरफ से अपने प्यारा प्यारा पति आनंद के लिए दिल की गहराइया से प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया है। शुभ दिन पेश की जा रहा है रेडियो SBS के जरिए और प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों घर की ओर देखा जाए छाई बड़ी बाकी है सुबह 11 बजने में। आप सभी सुन वालों को ये खबर किया जा रहा है कि कल दिन में 12 बजे से फरमाइश पेश किया जाएगी रेडियो SBS के जरिए। काफी फरमाइश पेश होगा तो कल दिन में 12 बजे से फरमाइशें जरूर और जरूर सुनते ही रहना। खूबसूरत नगमे जो प्रोग्राम में फरमाइशें का प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। और 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश होगा ग्लेन रामबाली के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हेमंत कुमार और गीता दत्त प्रोग्राम में काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है तो मतलब होते हैं कि लोकल टाइम का प्रोग्राम बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इस प्रोग्राम में सिर्फ लोकल गाने, हो सकता है एक दो बैठक गाना, या तो शायद कोई रिमिक्स आपके लिए पेश किया जा रहा है इस खास लोकल टाइम का प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम में ना ज्यादा वक्त लेते हुए पहला लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो वेस में इसके जरिए जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में आशनी और साथियों की आवाज में गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर पोपो की ओर।

और रेडियो SBS के जरिए सुंदर पोपो की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में मरहूम नदीम खान और उमर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान और उमर और साथ ही साथ साथ युग है आवास में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। जब तक चले प्रोग्राम में सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आपने सुना सागर मलिक की आवाज में और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं जहां पर भी आप इस वक्त हैं। तो चले प्रोग्राम में लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्लैक बॉय मिस्टर ब्लैक की आवाज में। मिस्टर ब्लैक की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको खबर करना चाहेंगे कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11।

ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रानी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शेरुत्रक से हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से यह आवाज पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का लोकल टाइम का प्रोग्राम जो हमेशा बहुत ही सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर और आपको मालूम होना चाहिए नए नए गाने

सुन वालों, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया, नए नए गाने अंदर आते रहते हैं रेडियो SBS के पास। हर एक को मालूम है कि रेडियो SBS का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं अच्छी साउंड में, अच्छी आवाज में, बस प्रोग्राम जो हमेशा पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं लोकल टाइम की खास प्रोग्राम में मोटी माला भोला सिंह की ओर। आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है जहां

और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों बस खबर किया है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं रेडियो SBS का संगीत भरी स्टेशन लाइव फन आउट एट हार्ट फन नेदरलैंड फन आउट मिड नेदरलैंड फन आउट एट मोस्ट स्टार्ट फन।

नबस पेश की गए साबरो सूखा संगीत पर अभी आपने सुना ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में राजेश शिव नंदन की ओर। रेडियो SBS की जरिए

Luisteren wel hoor, ik informatie voor je. Telefoonnummer 03025656560. Isi daar ki nummer par hamesha aap daar kar sakte hain. हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक इन्फो लेने के लिए सालों से रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले मरहूम शहीद वाहिद हुसैन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो एसबीएस के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश की गई। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं जरूर है और जरूर इस प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में। अबीर की आवाज में आप सुनते ही रहना। अमित के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

एडवांस में ये गाना अब उस प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। चलिए अब की बार ईबो की ओर हम आपको ले चलते हैं।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। हम आपको ले चलते हैं उमर की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है किस लिए मैंने प्यार किया।

0: ही एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में रेमोन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है मोहन की मुरलिया बाजे।
1: मोहन के मुरलिया
0: रेमोन।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए। तो चलिए अब की बार ये गाना मीका सुखू और तचना की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में एक आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को बाकी का दिन शुभ वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन जो आप सभी सुनने वालों को सेवा और खिदमत किया।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इसे फिल्म शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film gaat komt dan gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हेलो, मैं हरी पिया हूँ, ये तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत, एंड गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प प्यार लो प्यार।

मुझे रंग दे इसको समझ। और आशा भोसले एंक वाम द फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जी से कहते हैं कम थो समझ दो। जगजीत सिंह कल चौदहवीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्रख्त लीजिए सुसंग दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसंग दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आउ द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आयद फिल्म अजनबी एंड आयद फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

मैं भी सरफिरा तू भी सरफिरी गजोंग दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजोंग दौर अलका याचनिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। Is gezongen door Kumar Sanu en was uit de oude film Dilwale. Gaan we dan verder met Bajrangi Bhaijaan, gezongen door Javed Ali, komt Tujo Mila.

मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। KK की आवाज में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.